बिरहा शायद मिलन का सब तो वधिया थां है उस विराग की डूंगाई दे विच मिलना है चल रहन दे

शायर अगे लिखता है बंदा है बंदा बन इंज ना घूरी पा बेशर्मी दी मैं क्यों खां तू अपने इस गम नू चूरी पा बस रब अगे हो दुआ कर जिन्ना भी करें पूरी पा अपने मैं नू रस्सी दूरी पा।

दुख दारूने जिन्ने दुख सहने मन तगड़ा तन तगड़ा जिंदगी सौखी ते असी नरोए बन के निकलते हैं। जी हाँ, गल उस दुख चो उस जंग चो निकलन की कहानी है। औखा तो बहुत है छड़ना, देशां विचकार युद्ध हुंदे ने, लोग युद्ध नहीं करते, राजे युद्ध करते ने, फौजां लड़ाईयां जांदियां ने, कुर्सियां विचकार युद्ध हुंदे ने। कदी असी किसे कुर्सी वाले ने कहा मैनू चल रहन दे, मैं छड़ी है कुर्सी, हजारां लखां लोकां दा नुकसान नहीं होवेगा, जिंदड़ियां बच जाणगियां, फौजां करे आ जाणगियां। रोंदे करलोंदे